क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख मलेच्छ मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

नाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अव

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Are you listening? Lyca Radio is now available across Coventry on DAB.

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

केतु, अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

good morning. मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है संगीत प्रेमियों का।

0: शुक्रवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 25 तारीख एक और मनोरंजन प्रोग्राम एक और संगीत का सुहाना सफर लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है आप सब की ओर से भाई धन्यवाद कह दें काजल को शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग और उससे पहले लीजिए साहब 3 घंटे का ये कार्यक्रम लेकर मैं सफर शुरू करता हूं उम्मीद पे दुनिया कायम है आशा है आज का दिन और आज जो शुरू हो रहा है वीकेंड वो आपके लिए बहुत ही सुहाना और मंगलमय रहेगा जीवन की ये डोर बंधी है सपनों से आशाओं से और अंधियारों में नूर खिलेगा धूप खिलेगी छांव से शीश नवाओ तिलक करो अब उन राहों की मिट्टी से जिन राहों से कासिद लाया प्रीत संदेशा गांव से कैसी वो मनहूस घड़ी थी हम बंटवारा कर बैठे बहने बिछड़ी भाइयों से कुछ बच्चे छूटे माओ से शायद ये पुरवाइयां उनकी जुल्फे चूम के आई हैं सावन ऋतु में महक सलोनी आई आज हवाओं से भीगा बदन और उस पर भीगा भीगा मौसम उफ तौबा मोती बरसे जुल्फों से और अमृत मस्त घटाओं से नई जवानी अपनी राहें अपने आप निकालेंगी दुनिया भर बच के रहना चढ़े हुए दरियाओं से
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.
0: जीवन की ये डोर बंधी है सपनों से आशाओं से अंधियारों से नूर खिलेगा धूप खिलेगी छांव से

0: पीते पीते कभी यूं जाम बदलते हैं भाई, समय बदलता है, माहौल बदलता है, मौसम बदलते हैं, साल भी बदलने जा रहा है भाई, कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। 97 दिन बाकी हैं इस बरस के, लेकिन सब एक एक दिन का, एक एक लम्हे का लुत्फ उठाएंगे, जीवन को ढोएंगे नहीं, जीवन का मजा लेंगे, जिएंगे। तो साहब ये मनोरंजन प्रोग्राम और ये लाइका रेडियो नेटवर्क इसी काम के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहता है। माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहन भाइयों, वो सारे क्रम जो मेरे प्रोग्राम के हिस्से हैं, यानी 10:30 बजे आप खबरें सुनेंगे, 11 बजे के समाचारों के, अंग्रेजी समाचारों के बाद आप चिंतन सुनेंगे, आज का विचार सुनेंगे, और भाई कुछ ज़रूरी बातें, कुछ संदेश, कुछ वो पैगाम जो हमारे क्लाइंट्स के भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस तरह से गीतों में पिरो करके कुछ शायरी, कुछ बातें आपका दिल बहलाएंगे भाई, पेश करेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ दोपहर बाद 1 बजे तक। वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडियन रुपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK today giving 126.4 rupees for £1. भारतीय मुद्रा में 126.40 रुपए का रेट चल रहा है आज पाउंड का। और बहन भाइयों, यू कैन ट्रांसफर योर मनी वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। डोंट फॉरगेट, शर्तें लागू हैं।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
6: हमारी रक्षक है वो
7: बालाजी टेलीफिल्म्स

0: The Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो भाई। कुछ लोग जो है कुछ बातें घर पे नहीं बोल पाते हैं तो यहां भड़ास निकाल लेते हैं, उन सब की तरफ से ये गीत। बाकी आप समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ काम की बातें कर लें भाई, ये तो हंसने हंसाने की बहाने हैं भाई। काम की बात ये कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आर लाइक आर रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस at OVO Wembley Arena on Sunday 27th September. Doors open 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 to 5:45 p.m. and the main performance starts at 6:15 to 9:30 p.m. Tickets www.diwalistory.com. ये हो गया संदेश और अब भाई समाचारों की ओर रुख करते हैं। तैयार हैं आप खबरें सुनने के लिए?
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: और भाई खबरों में यहाँ लोकल कहीं ब्रिटेन की जो खबर है वो तो चर्चा में है। एंडी बर्नहम से कहा जा रहा है कि साहब बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ हमारी गलियां भी सुरक्षित होनी चाहिए और आप अगले हफ्ते होने वाली जो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस है ना उसमें आप इमिग्रेशन का चर्चा जरूर कीजिएगा, उस पर व्याख्या जरूर कीजिएगा। ये कहना है एंडी बर्नहम को, कह रही है उन्हीं की पार्टी की एक सीनियर पीयर हैरियट हार्मन। और क्या क्या हो रहा है ये सुनते हैं आज के प्रमुख समाचार। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खबरें सुनिए। पहले भारत की बात करें भाई। भारत में चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के बहुत शोर मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कई आरोप, कई भाई कहानियां उनके संदर्भ में, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी भी अब डिमांड करने लगे हैं। सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो चीफ हैं चिराग पासवान। इस नौजवान नेता ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है और ऐसे में अगर कमीशन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी उसकी और खास तौर पर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है कि वो अपनी बातों को मजबूती से रखे। उन्होंने आगे कहा कि अपोजिशन क्या कहती है, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर विपक्ष वाले आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी पॉलिटिक्स कैसे चलाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी या किसी भी अपोजिशन लीडर को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि जनता के मन में किसी प्रकार का कोई शक ना हो, इसलिए ये निश्चित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। बिहार के जमुई में एक सेक्सुअल वॉयलेंस का शिकार हुई लड़की के परिवार के साथ फोटो लगाने पर राज्य के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा है कि नासमझ अनाड़ी कानून विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री खुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट भाई ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक सीरियस कानून है। जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता के परिजनों के संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी करके पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्ची या नाबालिग की पहचान को गुप्त रखना कानूनन जरूरी है। काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर कल यानी शनिवार तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो सीजेपी 2 अक्टूबर से पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू करेगी, प्रदर्शन शुरू कर देगी। उन्होंने लिखा कि इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का हम संकल्प ले रहे हैं। जापान में चल रही एशियन गेम्स में भारत की तरफ से कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम के 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हरा दिया है। ये महिला हॉकी टीम की लगातार चौथी जीत है। फिलहाल भारत एशियन गेम्स में जो मेडल की लिस्ट है उसमें 19 पदकों के साथ 12वें पायदान पर है। इसमें 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। उत्तर पूर्वी राज्य भारत के इस स्टेट सिक्किम में भारी बारिश और ग्यारशिंग जिले के रिम्बी गांव में भूस्खलन हुआ है। धरती का खिसकना, यहां कई घर, सरकारी क्वार्टर और अन्य प्रॉपर्टीज जो है वो बह गई हैं। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामंग ने फेसबुक पर लिखा है कि कल रात हुए भीषण भूस्खलन के बाद रिम्बी ग्यारशिंग जिले की स्थिति से मैं बेहद दुखी हूँ और चिंतित हूँ। हालात गंभीर बने हुए हैं और लोगों की सिक्योरिटी और हित हमारी सर्वोच्च प्रायोरिटी है। इंटरनेशनल खबरों में यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच शुरू होते ही कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव सभागार से उठ करके चले गए। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस महासभा में इस घटना के बाद अपने एड्रेस के अपने संबोधन की शुरुआत बड़ी तीखी टिप्पणी से की। शुरू में ही उन्होंने कहा, अगर कोई नैतिक रूप से कायर व्यक्ति अभी तक इस सभागार में बैठा है और बाहर नहीं गया है तो बेशक उठ के चले जाएं। नेतन्याहू ने कहा कि जो देश निजी तौर पर इसराइल का बचाव करते हैं उन्हीं देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के सभागार से बाहर निकल गए। उन्होंने इसे हैरान करने वाला पाखंड यानी माइंड ब्लोइंग हिपोक्रेसी बताया। यूनाइटेड नेशंस की महासभा में नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने भारत को शुक्रिया कहा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने भारत और चीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीते दिनों नेपाल में आई बाढ़ के दौरान मदद के लिए दोनों मुल्कों के प्रति खास आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वें सत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि नेपाल, भारत और चीन की लीडरशिप में हिमालयी जलवायु तंत्र स्थापित किया जाए, एक संस्था बनाई जाए। बालन शाह ने कहा कि जब कोई आपदा आए तो हम सीमाओं के पार राहत और सहायता के लिए तालमेल स्थापित करें, ऐसा होना चाहिए। आपको याद दिला दें कि नेपाल में पिछले महीने आई बाढ़ में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 6000 लोग लापता हैं। इसराइल के खिलाफ जनमत को प्रभावित करने वाले नेतन्याहू के इल्जामों को कतर ने खारिज कर दिया है। कतर के स्पोक्स पर्सन ने लिखा है कि हम यूनाइटेड नेशंस महासभा में एड्रेस के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लगाए गए इल्जामों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कतर इजरायल के खिलाफ जनमत को प्रभावित करने का कैंपेन चला रहा है। और आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूएन की जनरल असेंबली के दौरान हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की है। शहबाज शरीफ ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री रहमान और मैंने व्यापार, इन्वेस्टमेंट, संपर्क, शिक्षा, पर्यटन और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों के फील्ड में पाकिस्तान बांग्लादेश दो तरफा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देशों के बीच करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमति बनी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और ये कार्यक्रम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन बहन भाइयों, ये जो 11 बजे की खबरों के बाद का क्रम है, ये है आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और आज के विचार के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल जी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में जो तीर्थराज प्रयाग है वहां से आज का चिंतन भिजवा रहे हैं। चिंतन भिजवाने के बाद में लगातार वो सुन रहे हैं। आंखों पर आपका चिंतन, लेकिन इस प्रकार के चिंतन आप नवरात्रों में भी भिजवाइए। उन दिनों रामलीलाएं होती हैं हिंदुस्तान में और रामत्व का, राम जी के जीवन चरित का प्रचार प्रसार रामलीलाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि इतिहास में, स्कूलों में, हमारे पाठ्यक्रम में राम कथा या फिर महाभारत ये लागू नहीं किए गए। यहां तक कि हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा पांडवों का नहीं हुआ, और दिल्ली में जगह जगह हमें जो सड़कों के नाम, बिल्डिंगों के नाम जो मिलते हैं भाई, वहां पर शाहजहां रोड, लोधी रोड, अकबर रोड, तुगलक मार्ग, ये तो मिले, लेकिन शिकायत करते हैं पंडित जी के युधिष्ठर मार्ग, अर्जुन रोड, इन्होंने दिल्ली बसाई थी, हस्तिनापुर नाम दिया था, लेकिन इनका नाम, पांडवों का एक पुराना किला मिलता है टूटा फूटा, अब उसे बनाया है सैलानियों के लिए आकर्षक। लेकिन कहने की बात यह है कि इतिहास में कुछ ऐसी बातें जो दर्ज होनी चाहिए और बताई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए, और उसमें रामायण से एक प्रसंग का जिक्र करते हैं पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल के। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो मर्यादाएं हैं, जो संस्कृति है, वो त्याग की है। भाई भाई के बीच जो संबंध भारत में मिलते हैं, उनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, और वो जिक्र करते हैं राम और भरत का। अब पाठ्यक्रम में तो रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन रामलीला के माध्यम से हमें पता चला, हमने सीखा, देखा, पढ़ा, सुना। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। राज्याभिषेक यानी राज तिलक, यानी उनको राजा बनाया जाना था। एक दिन पहले सारी तैयारियां हो गई थी, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, सभी राजाओं को, महाराजाओं को, राज्य अध्यक्षों को संदेश भेजे जा चुके थे, और राज्य भर से, पड़ोसी राज्यों से भी लोग ये राज्याभिषेक, ये राज तिलक की कार्रवाई देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे अयोध्या में। लेकिन एक रात पहले ही सारी परिस्थितियां बदल गई, बदल गया सारा कार्यक्रम। राम की सौतेली माता जी यानी भरत की मां ने महाराज दशरथ से अपने दो वरदान मांग लिए। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे, और जब उन्हें यह समाचार मिला तो बहुत दुखी हुए। क्या समाचार? कि राम को राज्याभिषेक करने की बजाय, राम को राज्य देने की बजाय, भरत की मां ने राज्य भरत के लिए मांग लिया। आपने वचन दिया है महाराज, दो वचन दिए थे मुझे, एक में मैं भरत के लिए राज्य मांगती हूं, राम को नहीं, भरत को राजा बनाइए। राम के पिता श्री दशरथ जी मान गए, कोई बात नहीं, राम कभी माइंड नहीं करेंगे, अपने भाई को राजा बनाकर बहुत खुश होंगे। दूसरे वचन में क्या चाहिए? तो भरत की मां कैकेयी ने कहा कि दूसरे वचन में राम के लिए वनवासी के रूप में 14 वर्ष का वनवास, एक सन्यासी के रूप में, एक त्यागी के रूप में,
कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास, राजमुकुट कुंडल राजवस्त्र सब कुछ त्याग कर वनवास में 14 बरस के लिए। दशरथ सुनकर के ही टूट गए। भरत के लिए राज्य ठीक है, लेकिन राम के लिए वनवास? मैं चाहती हूं कि भरत को राज्य करते हुए किसी तरह की भी कोई दखलंदाजी ना मिले, कोई हस्तक्षेप ना करे उनके राजकाज में। दशरथ मिन्नतें करने लगे, मैंने वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं तुम्हारा पहला वचन सर आंखों पर स्वीकार करता हूं, दूसरे वचन पर फिर विचार कर लो। ठीक है, कह दो रघुकुल की रीत ऐसी नहीं है, वचन निभाना जरूरी नहीं है। राम को पता लगा तो पिता के चरणों में शीश नवाकर वन के लिए रवाना हो गए, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भी। अब त्याग की बात वहां आती है, राम वनवास चले गए पर भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। अब भारत में ऐसे उदाहरण भी आपको मिलते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई का सर काटकर अपने पिता के सामने पेश किया कि राजा मैं बनूंगा ये नहीं, हालांकि वो बड़ा था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई का सर काट करके अपने पिता के सामने पेश किया और फिर पिता को एक कोठरी में कैद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। ये त्याग की नहीं भोग की परंपरा है, राम की परंपरा त्याग की है। पिता की आज्ञा को सर आंखों पर रख करके वनवासी का भेष बनाकर वन में चले गए। अब भरत ने क्या किया ये देखने वाली बात है। त्याग यहां आता है सामने, क्या राज्य स्वीकार किया? नहीं, ठोकर मार दी। राजा राम है, वही राजगद्दी पर बैठेंगे। तुरंत अपने बड़े भाई की खोज में वन को निकल पड़े। और बहन भाइयों, 14 बरस तक राम जब तक वन में रहे, भरत एक दिन भी महल में नहीं रहे, क्योंकि राम ने जिम्मेदारी दी राज का, चलाओ, अगर मुझे राजा मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ मुझे वनवासी रहने दो, तुम राज चलाओ। राम की खड़ाव लेकर भरत लौटे, सिंहासन पर अयोध्या में खड़ाव रख दी, यानी चरण पादुका जो पहनते थे लकड़ी की खड़ाव, और खुद राजधानी से बाहर एक कुटिया बनाकर जंगल जैसे माहौल में जमीन पर सोते थे, वहीं पर सारी फाइलें आती, राजकाज वहीं से चलाते भरत और शत्रुघ्न। और बहन भाइयों, भरत ने एक दिन भी राजकीय जीवन नहीं जिया, वनवासी का जीवन जिया। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि भाई की खोज में, राज्य को ठोकर मारकर भाई की तलाश में जब वो वनों में गए, कैसे उन्होंने पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को, पेड़ों को, दरख्तों को पुकारा, मुझे राम का पता बता दो, कहाँ है मेरे बड़े भाई, किस तरह से वो तड़प और वो ललक, वो इच्छा, वो त्याग। प्रणाम करते हैं हम ऐसी भारतीय परंपरा को।

0: बोलो हे जमी, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। प्रकृति से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, नदियों से, पर्वतों से, बता दो राम का ठिकाना, मुझे राम जी को वापस लेकर है जाना। अयोध्या की राजगद्दी पर है बैठाना। बहन भाइयों, ये है त्याग। राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया, इधर राम ठोकर मार के गए हैं, उधर भरत ठोकर मार रहे हैं, नहीं चाहिए। और एक तरफ ऐसा इतिहास है, कंस ने भी अपने पिता को कैद में डाल दिया था मथुरा के राज्य के लिए, पर वो हमारे आदर्श नहीं, हमारे आदर्श राम है, हम उन्हें फॉलो करते हैं। जब भरत को मिल गए राम, तो कहा भाई वापस चलिए, भैया राजा आप हैं, बड़े आप हैं, राज्याभिषेक आपका ही होगा। राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है। डोंट फॉरगेट, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिताजी ने वचन दिया था, उनका वचन न निभा रहा हूं। माता श्री ने आज्ञा की, तो भाई पिता की आज्ञा, माता की इच्छा सर आंखों पर। घर भाइयों, पूरी रामायण यानी रामचरित मानस आदर्शों का संग्रह है, जो बताता है कि पिता का पुत्र के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल जी गंगा किनारे, वहां जो पुराना इलाहाबाद था, प्रयागराज में आप विराजमान है, और वहां से चिंतन भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में भी आपसे ऐसे चिंतन प्राप्त होंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई राम कथा से ही जुड़ा हुआ एक और चिंतन हमें भिजवाया है हमारे बैसन साहब ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। गीत के साथ जोड़कर भाई हम कभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था, and that was taken from the film, I think, चक्रधारी। बोलो हे जमी, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? हमारे भगवान भी खोए हुए हैं, सुख इसीलिए दूर है हमसे, जब हम उनको वापस ढूंढ कर अपने हृदय में आसन पर बैठाएंगे, राजगद्दी सौंपेंगे, यानी नियंत्रण उनको देंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। अयोध्या में दिवाली, यानी हमारे भीतर रोशनी होगी। आज का चिंतन, आज का विचार भाई, एक और प्रहलाद नारायण शुक्ल जी ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत से भेजा है, लेकिन ऐसा ही चर्चा हमारी एक और लिसनर हैं, वो भी शुक्ल हैं, वनिता शुक्ल जी, इस चिंतन का जो जिक्र आपने भी किया था, आने वाले समय में भी हम और इस तरह के चिंतन शामिल करते रहे हैं, करते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट मिल रहा है, आज भी रेट अच्छा है। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू इंडिया, सेंड इट थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK। दे आर गिविंग टुडे 126.4 रुपीज, 126 रुपए और 40 पैसे इस समय रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। 126.4, that's the maximum today for one part.

0: What a melody by who can arrange this type of tune? One and only Kalyan Ji Anandi. और साहब ये कौन सी फिल्म का गीत था? शायद दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार. That was taken from the Upasana. Yes, Upasana was the film, 1971 की फिल्म. और भाई आपको याद आए होंगे फिरोज खान, उन पर पिक्चराइज था ये गीत. एक और गीत था जो पहले आपने सुना, वो भी उनकी फिल्म का गीत था. और फिरोज खान साहब से हमारे बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज अगर वो दुनिया में होते तो अपना 87वां जन्मदिन मना रहे होते. कहते हैं कि मुझे याद है उनकी एक फिल्म हमने बचपन में देखी थी, खोटे सिक्के. उसके बाद से मैं उनका फैन बन गया, वाजी बैसन साहब. और कहते हैं कि मैं उनकी तुलना हमेशा हॉलीवुड के एक एक्टर से करता रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. भाई मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, चरणजीत सिंह चन्नी, चन्नी साहब जो गायक कलाकार हैं यहाँ ब्रिटेन के. लेकिन जब फिल्मी दुनिया में उन्होंने धुनें बनानी शुरू की तो फिरोज खान की फिल्म की धुनें उन्होंने बनाई थी, यलगार की. और वो लेके आए फिरोज खान को स्टूडियो में मेरे सामने भाई, तो उनसे बातें हुई, फ़ोटो भी खींचे सब. पर मैंने पता नहीं क्यों अपनी लाइब्रेरी को जो है ना सही ढंग से नियोजित करके नहीं रखा, वरना ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी हस्तियों से मुलाकात, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास थी. आज मैं मिस करता हूँ फिरोज़ खान साहब के साथ. फिर एक बार संजय दत्त के साथ, हाँ, उनकी फिल्म जब रिलीज़ हुई है यलगार, तो भाई स्टेज पर मैंने उन्हें प्रेजेंट भी किया, खासकर संजय दत्त को. संजय दत्त को अलग से फिर इंटरव्यू बाद में किसी और फिल्म के लिए किया था. भाई इन लोगों की वो मुलाकातें, वो बातें याद बनकर साथ हैं. संजय साहब से तो फिर भी मुलाकात हो सकती है, उम्मीद है. लेकिन फिरोज खान साहब आज अपना जन्मदिन मना रहे होते, आज भाई याद कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे लोग फिल्मी दुनिया में. उनकी फिल्म का एक आध गीत और सुनवाएंगे और बहुत सारी जानकारी तो वाली भाई जुटा के लाएंगे, उनका प्रोग्राम भी सुनिएगा. एक संदेश आपके साथ साझा करना है भाई. एक तो हम याद दिला दें आपको कि मर्सिडीज बेंज वाले जो हैं वो याद दिला रहे हैं. वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह के कारोबार में हैं कि भाई मर्सिडीज बेंज आप खुद अपना बिजनेस चलाते हो या कोई आपका जानकार, तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, आपकी रोजी रोटी और आपकी इज्जत सब उसी पर डिपेंड करते हैं. इस सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए गए अप टाइम प्रॉमिसेस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के अनेक फायदों का एक पैकेज है. लीजिए, 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहेगा रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, वर्कशॉप खुली रहेगी, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ इसमें पैकेज में शामिल है. यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, उसे लगातार चलाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब एक जगह. तो साहब ऐसा करें, मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ हैं. आज ही मर्सिडीज डैश बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएं. इसके अलावा भाई कुछ और भी है, एक और संदेश है, और ये है जियो हॉट स्टार की ओर से. कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%. ऐसे लोगों को भाई जो दुनिया भारत के टॉप 1% उन लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं अनिल कपूर. एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ. जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप.
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: ऐसी ऐसी धुनें, ऐसे ऐसे गीत क्यों लगा रहा है ये कंप्यूटर भाई? फिर मेरा गाना निकल जाएगा साथ में, फिर लोग कहेंगे क्यों गाते हो. नहीं रुका जाता भाई, गाना निकल जाता है.

0: Ya.
1: बेल्जियम वाले प्रीति भारत पहुंची हुई है और वहां से मैसेज भेज रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया में सुन रहे हैं, मम्मी के पास आए हुए हैं। खुद भी सुनिए, औरों को भी सुनवाइए, वहां और भारतीयों को भी बताइए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू यगीत आपके नाम।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: क्या बात है और लीजिए साहब संदेश आ गए हैं पहले तो चिंतन के विषय में बहुत सारे प्रशंसक जो हैं अपनी राय भेज रहे हैं और शर्मा जी आपने भी कुछ संदेश बटोरे निर्मला जी कह रही हैं आपकी आवाज़ भी बिल्कुल मुकेश जैसी है गुड जॉब और ये कौन है भाई हाँ ये निर्मला जी कह रही हैं थैंक गॉड कि आप सिंगर नहीं हैं वरना आप हमें नहीं मिलते यहाँ रेडियो पर अरे साहब कहते हैं कभी कभी गाया करें गाने को दिल तो करता है लेकिन बात क्या है कि गाने के वो पैसे नहीं देते धमकी देते हैं थैंक यू शर्मा जी नमस्कार परसों मैंने भी आपको एक चिंतन भेजा था भाई ये विसलिंग बंद करो यार मैंने इतना कम कर दिया इसका वॉल्यूम परसों मैंने भी आपको चिंता भेजी थी उस पर चिंतन सुनाइए क्या बात है कहते मैं आपको क्या कह के बुलाऊं शर्मा जी कहता हूं तो थोड़ा सा फॉर्मलिटी सी लगती है पराए पराए से लगते हो जबकि आप मेरे बहुत अपने हैं कौन है भाई ये अपना ओ नेहरा साहब भाई नेहरा धनोरी पवन लिखते हैं कि आपको क्या कहूं मैं आपको दादा कह सकता हूं हाँ उम्र के लिहाज से नहीं भाई बात यह है कि और हमारे रामचंद्र ने और हमारे जो जितने भी वो हरियाणवी बच्चे हैं जो नौजवान मुझे एड्रेस करते हैं दादाजी कह के पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी उम्र ज़्यादा है उम्र नहीं है ज़्यादा फिर भी कैसे हो गए दादा भाई हमारे यहाँ हरियाणा में रिवाज है ब्राह्मणों को दादा कहने का तब भाई छोरे सुन रे उम्र तो मेरी कुछ भी ना है यही कोई मेरा ख्याल है 30 साल और कुछ महीने महीने मतलब ये 250-300 महीने वो ज़्यादा नहीं लेकिन दादाजी कहो सम्मान से अच्छा लगता बड़े प्यार से ये बात लगता है कि अपने इलाके का ही कोई व्यक्ति ये जानता है भाई कि संबोधन जो है ये ब्राह्मणों के लिए होता है दिनेश पोपट साहब मुकेश जी के आप भी दीवाने हैं मुझे मालूम है और ये सब आप ही के नाम के गाने हैं जो बज रहे हैं थैंक यू वेरी मच कहते हैं आई एंजॉयिंग लिसनिंग यू व्हेन यू ऐड योर वॉइस बताया ना दिनेश जी गाने को मन तो करता है पर धमकी से दिल डरता है कहते हैं अगली बार गाया तो आपका गला दबा देंगे थैंक यू और बाली भाई मेरे बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं और वो प्रशंसक हैं वो खुद इतने बड़े सिंगर हैं लेकिन वो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं राजकुमार साहब शुक्रवार की प्यार भरी राम राम सब तक पहुँचे और आपका दिन शुभ मंगलमय हो ये प्रार्थना है सुंदर आज का चिंतन बहुत पसंद आया राजीव पटेल जी सो नाइस ऑफ यू आपको भी चिंतन अच्छा लगा वियाना में हमारे अनिल सोनी जी रेगुलरली सुनते हैं और भाई ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं चिंतन के विषय में कहते हैं ब्यूटीफुल चिंतन स्वीटी कालड़ा जी आजकल आप रेगुलर लिसनर हैं आपके नाम रोज़ का एक गाना होगा जो अच्छा लगे रख लेना पसंद आए पैसे वापस वत्सला जी थैंक यू नाइस चिंतन आप कहती हूँ लास्ट टोरंटो में थैंक यू वेरी मच और भरत गंगाराम जी पम्मी सिंह स्लव में आंटी जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला कैसी हैं आप सुनती रहिएगा हीतल सोलंकी और आप कौन हैं जी आपका नाम ढूंढना हाँ हीरल थैंक यू वेरी मच तो भाई आप सबको आपके संदेशों के लिए शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या सुनवाते हैं कुछ तो लेके आते हैं
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट
2: क्या है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में भाई नए एपिसोड 35 में जो हमारा एपिसोड है ना राज बदन 5 ईयर शोकेस 5 बरस हो गए हैं उन्हें टेक ओवर किए हुए लाइका रेडियो नेटवर्क एज अ सीईओ और भाई वो अपने अनुभव बताते हैं और जो रंग रूप दिया है इस रेडियो को नेटवर्क को जो नई चीज़ें शुरू की हैं नए स्टेशंस टेक ओवर किए हैं नए नए कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए हैं तो वो उसके बारे में बात करते हैं रूबी रजा और डोनी ब्रेस्को के साथ और भाई आप भी सुनेंगे तो हमारे रेडियो की कुछ अंदरूनी बातें हैं जो हम नहीं बताते हैं तो उसमें डिस्कस की गई हैं, जरूर सुनिएगा। और इसके अलावा भाई राजबद्दन टॉक्स अबाउट द नर्वस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट एवर कम्स विद द रोल ऑफ सीईओ। भाई दूसरी बात यह है कि हमारे ये जो एपिसोड्स कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, लाइक एक्स्ट्रा अवेलेबल on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Leica Radio. Leica Radio. One performer.
3: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
3: Sunil
4: Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
0: Southall Travel, at all protected.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10%. With code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11.
11: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
10: 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
13: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.

0: रब से पहले इश्क था
1: डेफिनेटली इश्क था शायद सबसे पहले भाई इश्क से ही उत्पत्ति हुई है पूरे विश्व की और इश्क ही दुनिया को चलाता है। वेल, कैसा लगा आपको ये गीत गुरदास मान की आवाज में? भाई फिल्मों में कम गाए हैं हिंदी फिल्मों में मान साहब ने, लेकिन कुछ गीत तो भाई सुपर डुपर या मेगा हिट कहे जा सकते हैं। ये गीत भी दिल को छूने वाला रहा, पत्थर दिल फिल्म से हमने लिया था और ये उस समय से मैं बजाता आ रहा हूँ जब ये वो काले तवे होते थे ना उन पे आया था ये, और हमारे दोस्त विक्रम टाह ने हमें दिया था वो उन दिनों, वो HMV का यहाँ पर वो चलाते थे, कारोबार संभालते थे। राइट, ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर। इससे पहले सौदागर फिल्म का गीत सुनाया हमने आपको, तेरा मेरा साथ रहे, लता जी की आवाज़ में था। और अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं भाई पाउंड का रेट भारतीय करेंसी में।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Well, State Bank of India UK, for £1 they are giving in Indian currency 126.4 rupees. 126 rupees 40 paise. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Yaad rakhi, ye rate jo hai na, aaj ke liye maximum hai. Aur sahab, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Laika Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: आ जा माही। भाई आजकल के नहीं इनविटेशन ऐसे होती है उनमें पता नहीं चलता वो बुला रहे हैं या आने के लिए मना कर रहे हैं। अब एक इनविटेशन आया शादी का, उसमें लिखा है कि जी आपका आना ही एक गिफ्ट है, इसलिए कृपया गिफ्ट ना लाएं। मतलब शादी में आपका आना ही उपहार है और मेहरबानी करके उपहार ना लाएं। समझ में आए तो बताना भाई, वो बुला रहे हैं या आने इसीलिए मना कर रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
3: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: नाम पूछ के फिर मत मिलना, काम पूछ के फिर मत मिलना, बैंक अकाउंट पूछ के फिर मत मिलना।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Naam pucha ji, pata laga ke naam hai Ritu aur Ashok Bali and we are returning to London from Manchester. Hamare liye gaana ho jaye? Ho jayega ji, zarur ho jayega, lekin pehle ek information ho jaye aur wo इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ गई भाई वो इन्फॉर्मेशन? देखो ऐसे यहाँ है ये इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये है, कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं भाई, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मैट्योर अरीना ऑन सैटरडे द 31st ऑफ अक्टूबर। टिकट एज एट AXS एंड Event Bright and Ticketmaster exclusive radio partner are Laika Radio Network. भाई जरूर देखिएगा, सुनील ग्रोवर बड़े genius वो comedian हैं। ये भी बता दूँ, हरियाणा से हैं, सिरसा से। ये साथ बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा ने बड़े क्या कहते हैं चमत्कारी कलाकार दिए, पहलवान दिए, फौजी जवान दिए और वो क्या है, वो छोड़ो क्या रखा, सच्ची बात कपिल देव दिया, रामदेव दिया हरियाणा ने, हाँ रवि देव दिया, हाँ और कौन दी, उसका नाम नहीं लेंगे। नहीं नहीं वो ठीक है। कहते सपना चौधरी भी तो तब नहीं दिए, आज ही दिए थे।
1: दिस इज द Laika रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स LYCA. He's like her.

0: अभी नहीं सो सकते भाई, कुछ लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी है। क्या आपको मालूम है कि आज मोरारी बापू कथावाचक अपना जन्मदिन मना रहे हैं? संत मोरारी बापू, बापू तुमने प्रणाम छे। बिशन सिंह बेदी अमृतसर में आज ही के दिन जन्मे थे 1956 में। बापू 46 में जन्मे थे 1946, और बिशन सिंह बेदी 1956 में जन्मे थे। भाई आज होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। श्रीनगर में आज ही के दिन जन्मे थे महान वैज्ञानिक भारत के सतीश धवन साहब, हमने इन पर भी चिंतन किए हैं। और इनके अलावा भाई दीनदयाल उपाध्याय, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड नाम है भारतीय जनता पार्टी के, पुराने समय में जनसंघ जब था तो उस समय के लीडर और आरएसएस के थिंकर एंड को फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ। भाई दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके नाम पर अब रेलवे स्टेशन भी है, और बहुत उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुए। बहुत प्रतिष्ठित जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। दिव्या दत्ता एक्ट्रेस, शी सेलिब्रेटिंग है बर्थडे टुडे। फिरोज खान साहब का भी जन्मदिन आज हम पहले बता चुके हैं, हमारे बैसन साहब ने बताया था, याद दिलाया था। तो भाई और क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। भाई चौधरी साहब का जब भी हो जन्मदिन, हम बड़ी रिस्पेक्ट से उन्हें याद करते हैं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। और साहब आपके घर में, आपके परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ जी है लाइका रेडियो।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अनुपमा एवरीडे एट 7:30 पीएम ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
2: It's back, it's bigger and better.
1: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Gurya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803-240580.
2: Or visit DiwaliShoppingFestival.com.
3: Your Dubai property journey starts here
4: with a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
3: Available across all projects, Friday to Sunday only. So is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo, September 26th and 27th.
4: 10 a.m. to 8 p.m. at Marriott Hotel Smithway, Leicester. LE19 1SW. Discover greens, breeze and sharugs. Explore your options and meet our team for prices, availability and bookings.
3: Aiye apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
4: Terms and conditions apply.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: हमारी रक्षक है वो।
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
10: आई कांट वेट फॉर आवर हॉलिडे, सन, सी, नो वर्क।
11: सेम, बट हाउ आर वी सपोज्ड टू यूज आवर फोन्स अब्रॉड? रोमिंग कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून।
10: नॉट विद सिमज़ी. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
10: Brilliant.
12: And there's 10% off with Roam Free 10.
13: Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
16: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
15: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
17: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और बहनों भाइयों, अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है. तेरे जाने की यूं मुझको कमी महसूस होती है कि दिल में दर्द, आंखों में नमी महसूस होती है. मिलकर आपसे बेहद खुशी महसूस होती है, पर हिजर की एक घड़ी पूरी सदी महसूस होती है. सूरज, चांद, तारे, फूल, कलियां, तितलियां, जुगनू, कहां है जिसकी ये कारीगरी महसूस होती है. बाली भाई आ रहे हैं और शर्मा जी जा रहे हैं. मैंने भी एक भाई, ये तो चमन जी की कविता थी और चमन जी की कमी महसूस होती है, अपने हाथों से किताब पे लिख के दिया प्यारे रवि शर्मा को सप्रेम भेंट, और ब्रैकेट में लिख दिया मुफ्त में. थैंक यू सर, वी मिस यू. चमन लाल चमन, हमारे बहुत सारे प्रेजेंटर भाई आज हमारे बीच नहीं है लेकिन यादों में रहते हैं. उनमें जैगम अली हैं और भाई चमन लाल चमन हैं, साथी लुधियानवी हैं, अजमत बाजवा हैं, लक्की ढीलन हैं, मेहर खान हैं, और भाई हमारे बहुत सारे साथी हैं. क्या करें, अब आज तो उस दिन की याद नहीं आती जब लेके चलेंगे तुझे यम के बाराती. रवि शर्मा, जाते हुए तो कितने ही देखता है, जाना पड़ेगा तुझे भी, तुझको पता है फिर भी बना अनजान कहां.
18: आज गालो मुस्कुरा लो,
0: जी लो, जी भर के जी लो. इजाजत दीजिए, बाय बाय.

0: Oh my God, ऐसे गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है because एक आवाज जो बहुत जल्द ही दुनिया को छोड़ के चली गई वो है आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की जी हां एसपी बाला सुब्रमण्यम अभी इनका असली नाम तो बड़ा लंबा सा है श्रीपति पंडिताराय ड्यूला बाला सुब्रमण्यम बोर्न ऑन 4th जून 1946 एंड सैडली untimely demise during the COVID period on 25th September 2020. Commonly known as SPB ya Balu. इन्होंने जो records create किए बहुत कम ने किए. मुझे लगता है यसुदास जी match होते हैं इनके records के साथ. लेकिन देखा जाए तो 40,000 से ऊपर गाने 16 जबान में. और मैं क्या कहूँ? अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अगर मैं देखूं तो मैंने मेरी सारी जिंदगी बिता दी और 51 गाने गाए तो उसके सामने मैं जब 40,000 सोचता हूं तो दिमाग फिर जाता है मेरा मतलब चकरा जाता है 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अवार्ड्स जीतना शुरू कर दिया इनको टाइफाइड हो गया था तो स्टडीज छोड़ दी ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज एंड ही जॉइंड एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स सोचो कहां से कहां ले जाती है तकदीर 1964 में ही won the first prize in a music competition for amateur singers organized by the Madras based Telugu cultural organization and then he was the leader of light music troupe composed of Aniruddha that is on the harmonium फिर Ilaiyaraja on the guitar Ilaiyaraja, the great music director, he was on the guitar and later on the harmonium and Bhaskar on percussion. ये सब बड़े-बड़े नाम हैं। अगर इंडिया में रहता हो कोई, तो उनको समझ पड़ जाती है। लेकिन हम इतना ही बोल सकते हैं कि इनकी करियर जैसे आगे बढ़ी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में he was a great threat as soon as he entered. Kishore knew कि कोई नया सिंगर आया है। सारे समझने लगे लेकिन प्रेस वालों ने बुरी खबरें छापकर इनको डिस्क्रेडिट कर दिया कैसे अरे साउथ का आदमी है इसको वो प्रोनंसिएशन तो आता नहीं है लेकिन आपने गाने इनके सुने उसमें कौन सा प्रोनंसिएशन गलत है सोचो कोई ये नहीं सोचता था लोग सुनकर ही बस हां ठीक है वो साउथ का है तो थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम तो होता होगा तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भगा दिया ये बोलकर लेकिन इट वाज नॉट ट्रू ही वाज सो रेडी और मैंने दो तीन ही सिंगर्स देखे इंडस्ट्री के अंदर उसमें से दो की तो मैं बात कर सकता हूं एक है कविता कृष्णमूर्ति जी जो नोटेशंस लिख के गाने गाते हैं जी हां जब मैंने एक म्यूजिक डायरेक्शन किया था तो मैंने कविता जी को बुलाकर मैंने गाना उनको सुनाया तो जब सुनाया तो शी वाज राइटिंग मुझे लगा ये पता नहीं क्या लिख रही है एंड शी वाज राइटिंग द नोटेशन सा ग म प ध यू नो सो बाद में मैंने कहा दीदी आप क्या कर रहे हैं तो बोलते मैं गाना लिख रही हूं आपका तो मैंने बोला मैंने वर्ड्स तो दिए नहीं आपको बोले वर्ड्स नहीं मैं नोटेशन लिख रही हूं अरे फिर मैं चेन्नई गया आई वाज विद पीके मिश्रा द राइटर ऑफ एआर रहमान जिन्होंने रोजा के गाने लिखे थे उनके साथ एक राजस्थानी एल्बम मैं कर रहा था तो जब हम वहां गए तो उन्होंने कहा मेरा गाना है सुबह-सुबह एमएम क्रीम के साथ और सिंगर्स है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हां तो मैं तो एकदम पागल हो गया मैंने कहा मुझे ले जाइएगा तो बोलते हां मैं सुबह जगा दूंगा मुझे लगा सुबह जगाने में कहीं 9 बजे 10 बजे जगाएंगे जैसे बॉलीवुड में लोग उठ के 11 12 बजे जाते हैं इन्होंने तो 5:30 बजे मेरे को धक्का मारा और कहा उठो रिकॉर्डिंग के लिए जाना है मैंने बोला अभी तो अंधेरा है बोले 6 बजे तो उनका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा 6-7 बजे हम भागे और वहां पे बाला सुब्रमण्यम जी को मिले और एमएम क्रीम जी उनके साथ बैठे थे और उनको गाना सुना रहे थे बाजे पे हारमोनियम पे और वो नोटेशंस लिख रहे थे आए आए एंड देन आई चित्रा जी Chitra of the South, not Jagjit Singh Ji ki biwi, lekin Chitra of the South. वो आई तो दोनों ने गाना गाया, मैं वहां बैठा था और मैंने देखा साउथ का कोई गाना था वो करके, तो फटाफट उन्होंने थोड़ा भोजन किया और भोजन के लिए चौकड़ी मार के वो लोग सब नीचे बैठ जाते हैं और फिर सामने बनाना लीव्स आती हैं, उसके ऊपर इडली सांभर थोड़ा सा डोसा वगैरह, तो वो सब खाने बैठ गए और मुझे भी बुलाया. माय गॉड, द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, यू नो. आई नेवर रियलाइज्ड ही वाज सो गुड अंटिल लेटर, बट दिस इज द स्टोरी आई नो ऑफ बालासुब्रमण्यम जी, who passed away very sadly at the age of 74 due to COVID. Gaate the right till the end, lekin COVID took his life away. Let's listen to his songs. Next gana jo hai, wo bada pyara hai. Suniyega. Main hu Bali Brahmbhatt on Like a Gold with Gold Afternoons, and in the second hour, we shall do another tribute.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 126.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Your Dubai property journey starts here
5: with a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
4: Available across all projects, Friday to Sunday only. So is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo, September 26th and 27th.
5: 10 AM to 8 PM at Marriott Hotel Smithway, Leicester, LE19 1SW. Discover Greens, Breeze and Shahrughs. Explore your options and meet our team for prices, availability and bookings.
4: Aiye, apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
5: Terms and conditions apply.
6: Passports, tickets, kids' tablets.
7: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
6: And checking in with grandma.
7: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
6: That's why I got Simzy. Data in 2...

0: Yes, these songs are evergreen of Firoz Khan. Firoz Khan, Zulfikar Ali Shah Khan. Inke bare mein aap kya nahi jante? 25th September 1935 to 27th of April 2009. A man who had so many wonderful qualities. You just can't match him with anybody else. You know why? Because he had his flamboyant style, you know. He was known as the Clint Eastwood of the East. Yes, Clint Eastwood of the East, because he was a style icon. You know, with or without hair. Aapne baalon ke saath bhi dekha, aapke baalon ke baghair bhi dekha in the later part of his life. But a style icon. Flamboyant style. The cowboyish swag. And the cigarette-toting persona, you know, revolutionized the style of regular filmy heroes. Regular jo filmy commercial heroes the, wo bhi sharma jate the Firoz Khan ke samne. The handsome-looking Afghan, that's right. Inhone acting bhi ki. Inko itna zyada saraha nahi gaya tha. क्योंकि सेकेंडरी रोल्स ज्यादा मिलते थे इनको जैसे कि फिल्म थी सफर दूसरा एक गाना था जिसमें दादी अम्मा मान जाओ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सी फिल्म थी वो उसके अंदर भी इनको सेकेंडरी रोल्स मिले थे कुछ नेगेटिव रोल्स भी इन्होंने निभाए थे लेकिन 50 प्लस फिल्म्स 60s 70s और 80s में एनी वाज Very well appreciated. मुझे याद है जनाना शोज हुआ करते थे शान सिनेमा में और उस दौरान जनाना शोज में मुझे ले गए थे मेरी मदर और मेरी सिस्टर मुझे जनाना शोज में दोपहर का शो हुआ करता था एंड उस जनाना शो में मुझे ले गए थे एंड इट वाज रिपोर्टर राजू फिल्म थी और दूसरी फिल्म थी फिरोज खान की चार दरवेश एंड तब से मैं बचपन से उनका फैन बन गया था बस फिरोज खान को देखकर ही मैं खुश हो जाता था आई जस्ट फाउंड हिम सो गुड लुकिंग ऑन स्क्रीन एंड द फिल्म दैट ही हैड डन चार दरवेश विद फाइटिंग तलवार लेके एंड ऑल दैट एंड दोस काइंड ऑफ फिल्म्स आई यूज्ड टू लाइक व्हेन आई वाज अ यंग बॉय एनीवे बट मैंने सात गाने चुने सात तो नहीं पर छह गाने मैंने चुने जो मुकेश जी ने गाए थे इनके लिए और कपल ये दो तो आपको मालूम ही था जो मुकेश और कंचन ने गाए थे क्या खूब लगती हो फिर तुमने किसी से प्यार किया है लेकिन आगे जो गाना आएगा फिल्म सफ़र का फिर उसके बाद जो है तीसरा कौन एक फिल्म थी उसमें लता मंगेशकर के साथ मुकेश जी ने गाया था वो भी फिरोज खान पे पिक्चराइज हुआ था फिर अनजान राहें एक दूसरी फिल्म थी उपासना एक तीसरी फिल्म थी मतलब के उपासना वाला गाना आई थिंक रवि शर्मा जी ने सुना दिया था मैं देखता हूँ अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको मैं सुना दूंगा एंड अगर वक्त कम पड़ा तो मैं आपको कुछ सरप्राइज सॉन्ग सुना दूंगा जो मुकेश जी ने नहीं गाया था लेकिन किसी ने भी गाया हो लेकिन आपको मैं सुना दूंगा जस्ट डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ फिरोज खान साहेब
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the current rates of SBI UK, £1 in British sterling can get you up to 126.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono. Mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. one performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026. 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

0: माय गॉड,
1: वफा वफा है लायका।
0: आपने एक एक सुर ऐसा पी लिया है, ऑनेस्टली आई कुड नॉट फॉल्ट यू एनीवेयर। इन फैक्ट यू डिड सच अ ग्रैंड जॉब, एंड क्या रेंज है, you were fantastic. Thank you very much for the honor.
1: Thank you to you to inspire me, and I think millions of artists and
0: thank
1: singers
0: you,
1: like me
0: thank
1: from
0: you Aman.
1: Your music, from your generosity, from your energy, from your vibrance.
0: Thank
1: it's,
0: you
1: it's
0: Aman.
1: All so unique and so all so beautiful and so lovely. It's so pure and such a rarity these days.
0: मैं आ रहा जप्पी पान 27 नू, मैं आ रहा जप्पी पान।
1: हां जी आया नू बिल्कुल आओ
0: ते हुन तोड़ा गाना प्लीज, तोड़ा ही गाना सुना दो प्लीज।
1: जी बिल्कुल।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अमन त्रिखा।
1: हुक्का बार सन ऑफ सरदार, प्रेम लीला ते सारे ने सुनया ही हुआ है, इतना प्यार देता है। But there is one song of mine,
0: yes,
1: which I'll be singing in the show also on
0: yes.
1: 27th
0: yes.
1: In Leicester.
0: Okay.
1: They won't fall.
0: Okay.
1: This is dedicated to you, Baliji, and
0: thank
1: to
0: you,
1: all the lovely listeners of Laika.
0: Yes.
1: And you're doing such a tremendous and beautiful job.
0: Thank you, sir.
1: Baliji.
0: Thank you.

0: such a big one, isn't it? So much love coming in for this.
1: Firing up your evening with Radio Wally's Fry-Yay Firecracker.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash & Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash & Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash & Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties. 11
10: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
11: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
12: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
1: The true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Laika.

0: ममता शर्मा जावेद अली की आवाज टिंकू जिया पर इस दैट टाइम ऑफ द इवनिंग वी नीड टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब सेंट्री रेडियो वाली साल ये यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू स्क्वीज इन वन लास्ट बिग चेक तो मिलते हैं न्यूज के बाद
1: With Radio Wally's Roller Coaster, only on Leica Radio.

0: Kid.
1: Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Europe or यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
6: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: Passports, tickets, kids' tablets.
8: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
7: And checking in with grandma.
8: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
7: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
7: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Holiday sorted.
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit